0: नसर्वे कति छाप डिजाइन बे मारेगा खिनानी खनी तोला
1: खनै बिवा नसर्वे रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान महेन्द्र फुलारी तोला
0: ए नै स्याबा मार दोकान पो मोना नै पेसोलाई नि च्यारबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस टिग्री हार तान चनै तो हो नि जग मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानरी बेल्ले छ्याबा पोपिम ओछे
1: हजुर किमे झोकोलाई नि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना सैदी मिशा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै याव क्यार मोहै
0: जग मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
1: समुताई रबा ता क्रिबा ज्याल जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्नै यामो
0: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-5808-15 98-5-60-35-8-15 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
1: छतै र तान नि भिम्द
2: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: डिस्काउंट पॉइंट संग सदै रिवार्डेड।
1: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युन्डई गाड़ी को शोरूम पोखरामा अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट सबै को सेवा सहित एलआई मोटर्स। विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नंबर 061-527-426-537-526।
2: गोयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ने गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओवर।

0: What is this? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts. Anyway.

ओयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस फाइव नेपाल्स नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।